चाहता था कि ये सॉन्ग गाऊं बट मुझे मौका नहीं मिला. आई डिडन्ट गेट द अपॉर्चुनिटी टू सिंग दिस सॉन्ग. सो एंड दिस इज माय फर्स्ट शो आफ्टर द वॉइस. सो आई रियली थैंक गॉड साईं बाबा की मुझे यहां पर बुलाया, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, गाने का मौका मिला.

0: थैंक यू।
1: मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि आई कैन फील साईं बाबा सिटिंग एंड गिविंग मी ब्लेसिंग्स। सो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आई एम गेटिंग गूज़बम्स व्हेन आई एम सिंगिंग दिस सॉन्ग।

मुझे एक चीज का रिग्रेट हमेशा रहेगा कि मैं साक्षात बाबा के सामने लेक बहुत बहुत मन था मेरा बहुत पहले से कि मैं आऊंगा, मैं मुझे सुनाना है गाना। आज मुझे मौका मिला है, कहीं ना कहीं मुझे भी फील हो रहा है कि लाइक काश और पहले आ चुका होता मैं यहां पर।

0: Thank you. Thank you.
1: जब तेरी इनायत पर मेरी नजर जाती है, जब तेरी इनायत पर मेरी नजर जाती है, मेरे साईं, मेरे बाबा, मेरी आंख भर आती है। आप दे रहे हैं हमें इस कदर, आप दे रहे हैं हमें इस कदर कि हाथ दुआ में उठने से पहले ही मेरी झोली भर जाती है।

दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, जिस गुलशन में तेरा नूर न हो, साईं ऐसा तो कोई गुलजार नहीं, साईं ऐसा तो कोई गुलजार नहीं।

0: भिन्न युगल हस्तैर्वहन्तीं भजे हस्तैर्वहन्तीं भजे हस्तैर्वहन्तीं भजे.
1: So meditate and chant the Gayatri. Gayantam Trayate Iti Gayatri. The mother will form a protective armor around you, and eventually Brahma Prakash will descend on you and enlighten you.
2: So you see, my dear son, the chant that you have learned today is a universal chant. ये तो पूरी कायनात के लिए है, ये हर एक इंसान के लिए है, और इस कायनात के मालिक खुद आपके सामने बैठे हैं. इट इज ही हु इज द वेरी एसेंस ऑफ द गायत्री, एंड दिस मंत्र हैज बीन गिवन टू यू एज अ थर्ड आई टू रिवील टू यू दैट इनर विजन बाय विच यू मे रियलाइज द अल्टीमेट ट्रूथ that you and he are one.